काल प्रतिष्ठा की कर दी तो सोना नाथ अनाथ नमो सब तो सोना दानी नमो सब तेरे वर्गा नाथ नहीं ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं तेरे वर्गा कोई दानी नहीं ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं एक एक पंक्ति बड़े प्यार नाल सारे मिल के आके शोर चल

तू उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदो ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनु जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी वाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच पाप इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहेब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

सतगुरु रायपुर विच आए, चरण पाए, बेंत संगतां ने दर्शन कीते, बख्शां हासिल कीतियां, ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना के सहज कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन, चरण पाए हन, क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहबां दे दीदार करन आए, पर साहब अगे नहीं हन, दर्शन नहीं होए, ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त सह वापस जान लगे, ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी, पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया, खेतां दे रस्ते दी लंघ गए। ता फिर कन्नां विच ए आवाज गूंजी, ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने। ता दर्शना दी होर लालसा वधी, मन विराग विच आ गया। ता अरदास कीती, पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे, कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे। एक पल जुगां दे समान बीत रहा है, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

अज मन विराग विच है। दोनों जने आनंदपुर साहब तुर पे कि पहला साहबां दे दर ते चल के सेवा करिए, फिर साहबां दे दीदार करा। जितना चिर सेवा नहीं करांगे उतना चिर साहबां दे दीदार नहीं हो सकते। ता दोनों जने साहबां दे बाग विच आए ता केसरा सिंह माली नूं बेनती कीती कि कृपा करो सानू ए सेवा दा मौका दे। केसरा सिंह ने गरीब जान के निमाणे जान के छोटे माली दे तौर ते रख लिया, दिन रात बूटियां दी सेवा करन लगे, श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर रहे हन। एक दिन सहकलवी तरपाशा बाग विच आए ता एक फुल्लां दी क्यारी दे कोल खलोते बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए ते माली केसरा सिंह नूं शाबाश दित्ती, आखिया तेरी सेवा ते असी बहुत प्रसन्न, तू बहुत सेवा करदा। ता केसरा सिंह ने बेनती कीती, पाछा ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन, आप दे चरणा नाल प्यार करदे हन, पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा करदे हन, ए सेवा उन्हां दी। ता साहबा ने एकदम अखां बंद कर लईआं ते मुख विचों साहबां दे ए आवाज निकली कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके सह वापस चले गए। ता केसरा सिंह ने सोना ते मोहना नूं दसिया कि साहबां ने ए वचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पाछा सानू दीदार नहीं होणगे, अज मन विराग विच आ। अच्छा पाछा आप दी रिडा है, जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

खाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई रंग मजीठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या जिसको न सथोई

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

ठंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल

लड़न की समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया, ए खंडे बाटे दी पौहल दे के ऐसी रूह फूक दिती कि मौत का कोई डर नहीं, किसी जरवाने का कोई डर नहीं। चिड़िया ने भी

रखिया करके विखाई। तो गुरु दसम पातशाह ने धर्म की रखिया वास्ते, हिंदू धर्म की रखिया वास्ते।

वारी वंजा खनिए वंजा तौ साहिब के नामी ऐ परमेश्वर मैं तेरे तुवारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं। आओ अपनिया बिरतियां उस पासे ले चलिए। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाइया जयराम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नूं मिल के अपनी माता माता तृप्ता नूं गले लग के मिले धी नूं गल नाल लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे दीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नूं देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नूं कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाइया जय राव अपनी सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाइया जय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाइया जयराम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब के भाइया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर वो रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब के सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जयराम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए थे नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाइया जय राम गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजे ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े हो गए राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हुए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार। इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए। कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे आ तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की दे

जद इतने वचन कहे, भैन जी ए बेबे नानकी तुसी वड्डे हो, तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा। सत्संग एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है, ए वखरी गल है। इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावें ना मन्ने, पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा, मरदाने हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी, दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाण का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे तो पिता मेहता कालू जी पुछदे ने, बेटा कित्थे चले? साहब जी कहन लगे, मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन, जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने, पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके, क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने, सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए, एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने, लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले तीर। कि ये प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने, जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

जो हमारी बिन होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे साबित तुम हर

निरंकार हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख तू सारियां ते मेर कर सारी सृष्टि ते मेर कर तू मालक है तू प्रतपालक है तू राखा है सबे जी समा तू सारियां ते मेर कर जो ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर सारे अनु समत बख्श जगत सड़ रहे है अगा लगिया हुई ने तू कृपा कर तू मालक है सारिया ते कृपा कर जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा तू सारिया ते मेर कर सारे तेरे ने तू सारिया की कृपा कर ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए ये पदार्थ सारिया नू दे सारिया ते कृपा कर दुख दलिद्र भन दर सारिया का दुख दूर कर दलिद्र ये सब दूर कर तू सारिया ते मेहर कर मेहर कर।